जीवन में दूसरों की खुशियों की कामना करना सबसे सुंदर इंसानियत है। जब हम दिल से सबके सुख की प्रार्थना करते हैं, तब हमारे अपने जीवन में भी खुशियों की नई किरणें उतर आती हैं।

और अब समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి సమయం 6 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో ఆ వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ఢిల్లీ.
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था. ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है. विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है.
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा.
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी

0: दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
1: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill

Of dawns on our streets today. Rainbow FM 101.9 brings you warmth, music and stories. To aaj ka din bahut hi khaas hai. It's Guru Purnima, a day to bow to our teachers, mentors and guides who light our path. Aur aise din hum celebrate karte hain do icons ko jo ki Bollywood Sanjay Dutt jinki adaon ne aur andaaz ne cinema ko rangeen banaya. और फ्रीडम फाइटर अरुणा आसिफ अली जिनकी हिम्मत और जज्बे ने देश को आज़ादी की राह दिखाई. तो नमस्ते लो आदाब में, लेट्स बिगिन आवर सोलफुल जर्नी टुडे बिकॉज टुडे इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डे. सो 29th of July 2026, अ डे ऑफ डीप कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. इट्स ऑल्सो आषाढ़ी पूर्णिमा एंड सेलिब्रेटेड अक्रॉस एज व्यास पूजा, अ डे टू ऑनर ऑल आवर गाइड्स. तो चलिए शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जी आर डी टाटा एंड सेलिब्रेटिंग संजय दत्त, क्योंकि आज संजू बाबा का बर्थडे है. तो मैं हूँ आपका रेडियो मैन, तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक ख़ास गाने से. रॉकी से उनकी शुरुआत हुई और रॉकी से अब तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी रॉकिंग है. सो लेट्स लिसन टू दिस वन.

0: at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
2: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
3: All right, folks, so we were talking about Sanjay Dutt's birthday. Sanju Baba ka janmdin hai. Barsaat ki boonde shahar ko bheeg rahi hain. Aur hum aapke dil ko suron se bheegne yahan par aaye hain. Aaj Guru Purnima par hum apne guruon ko salaam karte hain. Aur isi din celebrate bhi karte hain Sanju Baba ka janmdin. Rocky ke is pehle geet mein Adi Barman ke sur, Anand Bakshi ke alfaz aur Kishore Lata ki awaaz ke saath milkar ek ऐसा जादू रचा था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है ना कमाल की बात. एज द कैमरा लिंगर्स ऑन दिस यंग संजय दत्त स्टेपिंग इन टू सिनेमा फॉर द फर्स्ट टाइम द सॉन्ग क्या यही प्यार है बैकग्राउंड में आप सुन भी सकते हैं. इट वॉज लाइक ए विस्पर ऑफ इनोसेंस. हिज फादर सुनील दत्त गाइडिंग हिम लाइक ए गुरु बिहाइंड द लेंस ऑलमोस्ट लीडिंग अ डिसाइपल. And on Guru Purnima, the bond feels even more sacred. जी हाँ, आदि बर्मन के जो म्यूजिकल फ्लो है वो बहुत ही जेंटली है, जैसे बारिश की रिमझिम बूंदे हैदराबाद की सड़कों को भीग रही हैं. और आनंद बख्शी के सिंपल येट प्रोफाउंड वर्ड्स, क्या यही प्यार है, कितना मासूमियत से पूछा हुआ सवाल है. अ क्वेश्चन टू एवरी यंग हार्ट हैज आस्क. एंड उसके बाद जो मेलोडी शुरू होती है किशोरदा की, बहुत ही खूबसूरत है. संजय दत्त की जो आंखें थी, दे वर स्पार्कलिंग विद नर्वस एक्साइटमेंट, येट हिज प्रेजेंस कैरीज अ रॉ मैग्नेटिज्म. द सॉन्ग बिकेम मोर देन जस्ट अ ट्यून, इट्स वन ऑफ दोज हार्ट बीट्स ऑफ द यूथफुल रोमांस इन द अर्ली 80s. है ना कमाल की बात. तो फिल्म खुद उनके वालिद सुनील दत्त ने बनाई थी. रॉकी was introduced as Sanjay Dutt as a young man caught between love and revenge. The film blended romance, action and emotional depth, so giving audiences a taste of Sanjay's versatility. Phir uske baad, there is no looking back. Kya Yahi Pyar Hai reminds us the innocence of love and the magic of the beginning of Sanju Baba's journey from Rocky Shy debut film to Munna Bhai iconic hug. तो आइए सुनते हैं एक और गाना संजू बाबा की फिल्म से.

भाई वाह, क्या कहना है इस गाने का। वाकई इसने समा बांध दिया है। यहाँ पर आप सुन रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, ऐसा समा ना होता। आज मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है। हैदराबाद की बरसात और रेनबो एफएम की महफिल दोनों एक

0: All right, what a lovely song that you just listened to. And a Kamal ka gana, and this is from the movie Vidhata. जी हाँ, विधाता फिल्म जो थी वो बहुत ही शानदार मल्टी स्टारर फिल्म रही है. और इस गाने में स्पेशली आप देख सकते हैं ढेर सारे ना सिर्फ एक्टर्स है बल्कि सिंगर्स भी है. किशोरदा, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम, शायद ही एक मंच पर इन सभी को ऐसा मौका मिला हो. किशोरदा, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम, हेमलता, कंचन, शिवांगी और खुद पद्मिनी कोल्हापुरी. That was really a fabulous song. So Rainbow FM 101.9 पर आज की जो महफिल है दोस्ती और जवानी के रंगों के नाम, बरसात की बूंदें अपना सुर छेड़ रही हैं और हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे गीत छेड़ रहे हैं जो छोटी सी महफिल को भी चांद चांद तक आ सकते हैं. साथ सहेलियाँ खड़ी खड़ी सोचो दोस्ती की हंसी शरारत और संजू बाबा की नई अदा, एक रंगीन तस्वीर जो दिल को बहुत ही ज़्यादा मचलने पर मजबूर कर दें, है ना, बहुत ही कमाल की बात. तो दैट वॉज अ यूथफुल सॉन्ग बर्स्ट विथ लाफ्टर टीजिंग एंड इनोसेंस ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड देयर वॉज दिस न्यू फ्रेशनेस ऑफ द करियर इन संजय दत्त दैट वॉज ब्लेंड इन टू द वर्ल्ड ऑफ फन विद एफर्टलेस चार्म. हिज स्माइल, हिज एनर्जी एंड हिज बॉयश इनोसेंस मेक द सॉन्ग स्पार्कल. That was really good. For the audience of the 80s, the track reminds that the cinema could capture everything friendship turned them into timeless memories. है ना कमाल की बात. तो फिल्म थी विधाता, कल्याण जी आनंद जी की संगीत में, मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे और दोस्तों साथियों की आवाज़ों में आपने गाना सुना. हाँ, जैसे डायरेक्ट किया था सुभाष घाई ने. एक बहुत ही बड़ा ग्रिपिंग ड्रामा था रिवेंज का, डेस्टिनी का, बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसे डायरेक्ट किया था. तो साथ सहेलियां खड़ी खड़ी हमें याद दिलाती हैं कि दोस्ती और जवानी, मस्ती कभी पुरानी नहीं होती. तो आज संजय दत्त का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन कुछ लम्हों को, उन कुछ यादों को, उन कुछ मेमोरीज को जो सिनेमा के ज़रिए हम कभी कभार रोमांस, कभी एक्शन, कभी दोस्तों की हंसी, सब कुछ यहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपके लिए एक नया गाना तैयार रहेगा. स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव. यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और मेरा नाम है रेडियो मैन.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్లు ఆ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
0: जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये गाना आपके लिए कितना जरूरी है और कौन सा गाना आने वाला है. रेनबो FM 101.9 पर आज की महफिल है यादों और जज्बात के नाम और नाम फिल्म से हमने गाना लिया है. जी हाँ, दिल को छू जाता है ये गाना. चिट्ठी आई है, लोगों के आंखों में आंसू अश्क बार हो जाते हैं. एक ऐसी चीज जो हमेशा

आपको याद दिलाती है कि आप कितने भी दूर हो, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई आपके घर पर ज़रूर मौजूद है। एक आवाज़ जो यादों को ज़िंदा कर देती है। आज संजू बाबा के जन्मदिन पर ये गीत उनकी पहचान बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो आइए, लेट्स लिसन टू दिस वेरी अमेजिंग सॉन्ग, चिट्ठी आई है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन।

ऑलराइट दोस्तों, तो आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन चिट्टी आई है। ये गाना नहीं, एक जज्बात है। इतना दिलकश, इतना खूबसूरत गाना आप बयान नहीं कर सकते। जो कोई कहीं आपके अब्रॉड जाता है तो शायद ये गाना उन्हें ज़रूर याद आता है। सो वेर एवर देर आर एनी काइंड ऑफ एसोसिएशंस, दीज आर द सॉन्ग्स दैट आर बींग प्लेड। एंड टूडे वी आर celebrating this wonderful hairstyle and excellent elegant mannerism guy. Right in the 80s he was dropped by his father from Rocky and in Naam. तो नाम से उन्होंने अपना नाम बहुत ही रोशन किया, और फिर उसके बाद उनका नाम इतना ज़्यादा हुआ कि वो कभी कभी बदनाम भी हुए। खलनायक होने दीजिए या थानेदार, लेकिन उनका नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहा। सो वी विल ट्राई एंड लुक इन टू सम मोर सॉन्ग्स एंड लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ संजू बाबा। वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे हियर ऑन नमस्ते हेलो आदाब शो ऑन आकाशवाणी एफ एम 101.9 एंड आई एम योर रेडियो मैन। तो चलिए, आपके लिए एक गाना आ रहा है जिसका नाम है तम्मा तम्मा।

0: All right, such a lovely song. In fact, मसाले वाला नगमा आपने अभी सुना. एंड दोस्तों, तमा तमा लोगे हमें याद दिलाता है कि बॉलीवुड का असली रंग है डांस, मस्ती और जज्बात. संजय दत्त के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ही अदाओं और उनके ही डांस फ्लोर को रोशन करता है ये गाना. जी हाँ, थानेदार जो दरअसल थी एक मसाला एंटरटेनमेंट वाली फिल्म थी, ब्लेंडिंग एक्शन, कॉमेडी और रोमांस. द फिल्म स्टार संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जितेंद्र एंड ऑफ कोर्स जयप्रदा. अमरीश पुरी का भी किरदार काफ़ी रोशन रहा. संजय दत्त प्लेड अ टफ कॉप विद अ स्वैगर एंड हार्ट, वाइल माधुरी ब्रॉट हर ट्रेडमार्क चार्म एंड एलिगेंस. और द ट्रैक एलिवेटेड द मूवी इन टू अ पॉप कल्चर. जी हाँ, बप्पी दा और अनुराधा पौडवाल ने मिलकर ये गाना गाया. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर सुनेंगे एक छोटा सा गाना. स्टे ट्यून.
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
2: Now we'd like to settle things down just to...

0: ऑलराइट दोस्तों, ये फिल्म थी साजन, जहाँ पर उन्होंने शायर का किरदार अदा किया था। और साजन में इतने ढेर सारे गाने थे, तकरीबन एक दर्जन गाने, पंकज उदास की आवाज़ से लेकर अलका याग्निक होने दीजिए, ढेर सारे गाने हैं। हम यूं ही उनके गाने प्ले करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलते हैं हमारे न्यू दिल्ली स्टूडियोज़ में, जहाँ पर आप बारी बारी से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में न्यूज़ या समाचार।
1: कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के

0: दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned.

0: काफ़ी रंगीन हो जाती है जब आप ऐसे खूबसूरत नगमे प्रस्तुत करते हैं। दिस इज़ अनडाउटडली वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ द अर्ली 90s एरा। रेनबो FM पर आज महफिल है शायरी और मोहब्बत की, और उनके नाम जिन्होंने ऐसे खूबसूरत गीत लिखे जैसे समीर ने, और जो दिल को छू लेने वाले हैं और शायर आपको शायद बना देते हैं। आवाज़ जो जज्बात को अल्फाज में बदल दे। संजू बाबा के जन्मदिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक बेहतरीन सा मौका, जहां पर हम संजू बाबा की चुनिंदा फिल्मों से कुछ अहम गीत लेकर आए हैं। ये नगमा एक सिर्फ गाना नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार है, जो हर दिल को अपने शायर की तलाश होती है, बल्कि एक आशिक की तलाश होती है। तो शायर है इज़ अ सॉन्ग दैट ब्रीथ्स पोएट्री। समीर लिरिक्स आर ड्रेंच्ड इन रोमांस, टर्निंग लव इनटू वर्सेस दैट फील एटर्नल। नदीम श्रवण्स म्यूजिक फ्लोज लाइक अ जेंटल रिवर, कैरिंग द वर्ड्स विद ग्रेस एंड टेंडरनेस, एंड नो डाउट अबाउट इट, अलका याग्निक हैज डिलीवर्ड इट सो वेल। संजय दत्त का किरदार अमन का है, सेंसिटिव पोएट है, एंड द सॉन्ग इज इट सिनेमैटिक सोल। उनके एक्सप्रेशन काफ़ी इंटेंस हैं, लॉन्गिंग इन हिज आइज मेड द ऑडियंस बिलीव द मैजिक ऑफ वर्ड्स। पेड विद सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित इन द फिल्म, संजय ब्रॉट डेप्थ एंड वल्नरेबिलिटी, मेकिंग टू शायर है वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रोमांटिक बैलेड्स ऑफ द 90s। तो काफ़ी खूबसूरत गाना है, आपको पसंद आया होगा। लॉरेंस डिसूज़ा के डायरेक्शन में आई थी फिल्म, रोमांटिक ड्रामा है, लैंडमार्क फिल्म है, बॉलीवुड की लव स्टोरीज में एक बड़ा इतिहास इसने रचा है। तो शायर है मैं तेरी शायरी हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत हर इंसान के अंदर एक शायर को ज़िंदा कर देती है। संजय दत्त का जन्मदिन पर हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी अदाओं, उनके अल्फाजों, उनके जज्बात को, और रूह बख्शने वाली ये ख़ास पेशकश। बरसात की बूंदें और ये गीत दोनों एक साथ मिल जाएं तो दिल को भीगने का एक अलग ही मज़ा देता है। तो ये था एक खूबसूरत गाना नमस्ते लो आदाब के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नए गाने की तरफ हम मुड़ते हैं, और जो अगला गाना हमने लिया है वो है हमारी दूसरी फिल्म सड़क से। सड़क जो गाना है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है गाना, और थोड़ा लंबा है गाना, इसलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिर ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, और हम भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो जल्दी से आप अपने मैसेजेस हमें रवाना कीजिए और बताइए कि आपको संजय दत्त की कौन सी अदाएं, कौन सी एक्टिंग, या उनकी रोमांटिक अदाएं, या फिर एक्शन वाले जो अदाएं हैं आजकल वो दिखा रहे हैं, या फिर विलन वाला रोल, वो हमें बताइए। So stay tuned and stay alive. You have tuned to this wonderful station, Akashvani Hyderabad on FM 101.9 MHz. And I'm your radio man.
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమో సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.brao.ac.in లో పొందవచ్చు.

Wow, this is one of those favorite songs in the 90s, undoubtedly, है ना कमाल की बात। दोस्तों, हैदराबाद की ये जो शाम है, बल्कि दोपहर है और फिर साथ ही साथ सुबह है, वो

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपने सुना, इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद ये नगमा अगर ना होता तो हम शायद इसके बिना जी नहीं पाते। द सॉन्ग इज़ द इमोशनल हार्ट बीट ऑफ द फिल्म सड़क। समीर के खूबसूरत बोल हैं कैप्चरिंग द हेल्पलेसनेस ऑफ लव, द इनएबिलिटी टू एग्जिस्ट विदाउट द बिलव्ड। नदीम श्रवण के कॉम्पोजिशन ने ऐसा हंगामा बरपा किया कि इट इज़ हॉन्टिंग येट टेंडर। मनहर उदास की सोलफुल वॉइस पेड विद अनुराधा पौडवाल्स डेलिकेट टोन्स क्रिएट अ ड्यूट ऑफ यर्निंग। ऑन द स्क्रीन यू हैव संजय दत्त एज रवि एंड पूजा भट्ट एज पूजा। एम्बॉडीड द पेन एंड पैशन ऑफ लव कॉट इन अ क्रूल वर्ल्ड। देयर केमिस्ट्री मेक्स द सॉन्ग अनफॉरगेटेबल, टर्निंग इट इन टू एन एंथम ऑफ डिवोशन एंड लॉन्गिंग। 1991 में आई ये फिल्म महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी। एक डार्क रोमांटिक ड्रामा है अबाउट लव, ट्रामा एंड रिडेम्पशन। संजय दत्त, पूजा भट्ट, सदाशिव आमरेपुरकर एज महारानी, आइकॉनिक विलन रोल है उनका। दीपक तिजोरी का भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार है। नीलिमा अजीम, अवतार गिल, सोनी राजदान, मुश्ताक खान और पंकज धीर। ये फिल्म बहुत ही ग्रिटी रियलिज्म पर बैलेंस करती है, एक ऐसी स्टोरी जो कभी नहीं बॉलीवुड में आई थी। दोस्तों, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाएंगे याद दिलाता है कि असली मोहब्बत कभी अलग नहीं होती, चाहे दुनिया के सारे दर्द क्यों ना हो। संजय दत्त के जन्मदिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी वो अदा जो हर गीत को जज्बात बना देती है। बरसात की बूंदें और ये नगमे दोनों एक साथ दिल को भीगने देते हैं, यहाँ पर हम रेनबो एफएम पर। तो ये सफ़र जारी रहेगा नमस्ते हेलो आदाब पर, और आप हमारे साथ यूँ ही बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी जो अगली पेशकश है, हम चाहेंगे कि आप इसे सुने और इसे समझें और साथ ही साथ इसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करें। तो लीजिए, आपके लिए आ रहा है ये गाना।

ऑलराइट, हम भी आशिक हैं संजय दत्त के, इस वजह से क्योंकि उन्होंने इतनी वर्सिटैलिटी, इतने गाने हमें दिए, इतनी फिल्में, और विभिन्न प्रकार के अपने अभिनय से हमें और हमारे जैसे लोगों का दिल जीता। या दोस्तों, हम याद करें एक ऐसे कलाकार को जो कि अभी भी बारी बारी से काफ़ी फिल्मों में एक खूबसूरत किरदार अदा करते हैं। मैं तेरा आशिक हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा गाना है जिसे कंपोज किया है हमारे दूसरे कलाकारों ने, और अगर आप रोशनी डालेंगे तो रश्मिकांत प्यारे लाल, और साथ ही साथ मैं तेरा आशिक हूँ रूप कुमार राठौड़ की एक सुरीली आवाज़ में आपने गाना सुना। 1993 में फिल्म आई थी गुमराह। गुमराह एक ऐसी फिल्म थी जो आउटसाइड इंडिया पर शूट हुई थी। इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल फिल्म। द फिल्म टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन श्रीदेवी ट्रैप इन अ ड्रग स्मगलिंग रैकेट अब्रॉड एंड संजय दत्त प्लेइंग द मैन हु हेल्प्स हर फाइट फॉर सर्वाइवल। द मिक्स ऑफ सस्पेंस, कोर्टरूम ड्रामा एंड द रोमांस मेड गुमराह अ ग्रिपिंग वॉच एंड इट्स म्यूजिक एल्बम एडेड इमोशनल डेप्थ। तो दोस्तों

मैं तेरा आशिक हूँ, याद दिलाता है कि असली मोहब्बत एक वादा है जो वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। संजय दत्त और श्रीदेवी की जोड़ी ने इस गीत को अमर बनाया। रेनबो एफएम पर ये नगमा आपके दिल को फिर से शायर बनाने वाला है। जी हाँ, तो शायर ने बना दिया होगा। तो ये था आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम, और बल्कि हमारे दूसरे गाने भी तैयार रहेंगे। तो 12:40 बल्कि 41 मिनट हो रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा। और दूसरे नगमे की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारे ये ख़ास शो जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब। संजय दत्त की आज जन्मदिन है। 1959 29 जुलाई को पैदा हुए। इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु वर्क्स प्राइमरली इन हिंदी फिल्म्स। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। कन्नड़ा, तमिल, मराठी, पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। 145 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके वर्सेटाइल रोल, स्टाइल, इंटेंसिटी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। ही इज़ पोर्ट्रेट फ्लॉड हीरोज़ ऑन स्क्रीन। दत्त हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल अवार्ड्स, 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स एंड 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड ए ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड। दत्त फैमिली का वो हिस्सा है, और एक्टर पॉलिटिशियन जैसे सुनील दत्त, नरगिस दत्त के वो बेटे हैं। दत्त मेड हिज एक्टिंग डेब्यू विद रॉकी, डायरेक्टेड बाय हिज फादर। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और नगमा। इस बार हमने फिल्म है उनकी खलनायक। खलनायक के उस ज़माने की कहानी है जब उन्हें हथियार रखने के ताल्लुक से जेल भेजा गया, फिर जेल से वो रिलीज़ हुए, फिल्म भी रिलीज़ हुई। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के लिए ताड़ा का एक्ट उन पर लगाया गया। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर पोसेसिंग इलीगल आर्म्स इंक्लूडिंग 56 राइफल प्रोक्योर फ्रॉम अदर्स अक्यूज इन 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स। तो उन्हें 5 साल की सज़ा हुई, और फिर संजू बाबा वापस आए। उनकी एक और की फिल्म आई थी संजू बायोपिक, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए, ये गाना बहुत ही मशहूर था, कॉन्ट्रोवर्शियल था, उनके रिलीज़, उनके अरेस्ट को लेकर, और गाने चोली के पीछे क्या है।

वाह, दैट वाज रियली अमेजिंग. चोली के पीछे क्या है, एक ऐसा गाना जो खलनायक है. जी हाँ, खलनायक वाज बेसिकली संजय दत्त के अरेस्ट और रिलीज के साथ.

साथ कुछ न कुछ चीज़ें उनकी जो ज़िंदगी में चल रही थी वो शायद सिनेमा पर पर्दे पर नज़र आ रही थी। द फिल्म सक्सेस केम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि सुभाष घई ने इसे डायरेक्ट किया था। संजय दत्त की पावरफुल एंटी हीरो परफॉर्मेंस थी एज बल्लू, माधुरी दीक्षित का स्टार परफॉर्मेंस था, फिर जैकी श्रॉफ की प्रेजेंस एज पुलिस ऑफिसर। इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट। और ये गाना चोली के पीछे क्या है, संजय दत्त के लिए एक अहम बात थी। संजय दत्त को अरेस्ट 1993 अप्रैल में किया गया। सबसीक्वेंट उन्हें बेल मिली, क्रिएटेड मैसिव मीडिया अटेंशन विच अनडिनाइबली बूस्टेड द क्यूरियोसिटी एट द बॉक्स ऑफिस। और इसी वजह से अरेस्ट और रिलीज के बाद जो फिल्म रिलीज हुई थी अगस्त 6 को 1993 में सुभाष घई के डायरेक्शन के तले, तो 2.5 से 5 करोड़ तक बनी थी। लेकिन काफ़ी फिल्में की तरह ये भी फिल्म कामयाब रही, पैसे कमाई। द साउंड ट्रैक वॉज द थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग एल्बम बैक देन। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संजय दत्त का जन्मदिन है। संजय दत्त खलनायक के रूप में लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर उसके बाद देर इज़ नो लुकिंग बैक। द फिल्म ऑलरेडी हैड अ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट। और खलनायक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सनसनी थी। संजू बाबा की गिरफ्तारी और बेल ने इसे एक और भी बड़ा बनाया। लेकिन असली ताकत थी उसकी कहानी में, उसका सुर, उसके जज्बात। चोली के पीछे क्या है का खलनायक जो था वो इस गीत को सुनने आया था और वहीं पर ठहर गया। आज जब कभी भी ये नगमा बजता है तो हम याद करते हैं वो दौर को जो एंटी हीरो को याद दिलाता है। बॉलीवुड ने एंटी हीरो का जो मिजाज बनाया था शायद ऐसी फिल्मों को लेकर ही बनाया था, चाहे वो शाहरुख खान की डर होने दीजिए या फिर खलनायक होने दीजिए संजय दत्त की। है ना कमाल की बात। तो एक कुछ रोशनी डालते हैं हम संजय दत्त की अपनी जिंदगी पर।

और right, दोस्तों, तो ये था डबल धमाल से गाना, और धमाल अभी बरकरार है हमारे पास। अगला एक घंटा है हेलो रेनबो पर, जहाँ पर आपसे हम जुड़ेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। संजू बाबा की फिल्मों से कुछ और नगमे हम आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए टॉप ऑफ द आवर पर हमारी म्यूजिकल ट्यून बजाते हैं, फिर उसके बाद संजू बाबा की फिल्मों के नगमे। स्टे ट्यून एंड स्टे लाइव, यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल एडिशन ऑफ नमस्ते हेलो आदाब के बाद हेलो रेनबो, और मैं हूं आपका रेडियो मैन ओनली ऑन 101.9 FM।

ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुना, आवाज़ दो हमको हम खो गए। ये गाना दरअसल गाना नहीं बल्कि एक महफ़िल है, और ये महफ़िल हमें याद दिलाती है कि आवाज़ जो दिल के अंदर हो और तन्हाई को वो जगा सकती है। एक नगमा जो कह जाए कि आवाज़ दो हमको हम खो गए। संजू बाबा और काजोल की जोड़ी, और मोहब्बत का वो दर्द जो हर दिल को छू जाता है। आवाज़ दो हमको हम खो गए, द सॉन्ग ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग। समीर्स लिरिक्स कैप्चर दी एम्प्टीनेस ऑफ सेपरेशन, वाइल द मेलोडी ऑफ आनंद मिलन इज हॉन्टिंग येट टेंडर। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें एक दूसरे से इतनी वीव करती हैं कि बयान नहीं कर सकते, जैसे दो जिस्म और एक जान या एक रूह हो। ईच नोट सोक्ड इन पेन एंड यर्निंग ऑन द स्क्रीन, संजय दत्त इंटेंसिटी, काजोल्स वल्नरेबिलिटी मेक द सॉन्ग अनफॉरगेटेबल। देयर केमिस्ट्री कन्वेज द फ्रिजिलिटी ऑफ लव व्हेन टेस्टेड

ऑलराइट दोस्तों, जसविंदर निरुला की आवाज़ में आपने गाना सुना। संजय दत्त की फिल्मों से हम यहाँ पर आपके लिए कुछ खास नगमे लेकर आए हैं, तो एक बार फिर

थी हथियार और मल्टीस्टारर फिल्म थी। फिर ही रोज टू प्रोमिनेंस इन द अर्ली 90s। ही हैड गॉट खतरनाक, तेजा, जहरीले, थानेदार, खून का कर्ज, यलकार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, साहेबान, गुमराह, आतिश, सड़क, साजन ने तो उन्हें कमाल का हीरो बना दिया, खलनायक ने उन्हें वाकई नायक बना दिया। एंड ही रिसीव्ड नॉमिनेशन फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर साजन एंड खलनायक। एक अखबार ने लिखा था कि दत्त अर्ली फिल्म्स लाइक नाम एंड सड़क गॉट हिम अ लॉट ऑफ फेवरेबल अटेंशन एंड साजन एस्टैब्लिश दत्त एज द कन्वेंशनल सॉफ्ट हीरो। साजन वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ 1991। सड़क रैंक फिफ्थ, खलनायक वॉज द सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1993। दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर बॉक्स ऑफिस सक्सेस, गुमराह। है ना कमाल की बात। 1993 से 1990 तक वो अरेस्ट हुए, बॉम्बे में सीरीज ऑफ बम बॉम्बिंग हुई और क्राइम और टेररिस्ट से उनका जो नेटवर्क रहा है उसकी वजह से काफ़ी नाम खराब हुआ बॉलीवुड का। प्रोसिक्यूटर्स एलिजेड दैट दत्त रिसीव वेपन्स एट हिज रेसिडेंस फ्रॉम अबू सालम। एंड ऐसी बातचीत हुई। दत्त स्टेटेड दैट ही हैड ऑब्टेन अ सिंगल टाइप 56 राइफल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी सनम फॉर द फैमिली प्रोटेक्शन। एंड द रिपोर्ट सजेस्ट दैट इज फादर पोलिटिकली पोलिटिकल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस हाउ द केस प्रोसीडेड। दैट फर्स्ट फिल्म वॉज दौड़। दौड़ भी बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। वो भंवरे, अगर आपको गाना याद है तो मुझे तो याद है, आपको याद है या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको वो गाना याद ज़रूर होगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं दौड़ का ये गाना।

ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट से ट्यून किया है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो रेनबो। और मेरे साथ मेरी दोस्त भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। शी हैज़ कम टू रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस चेयर। शी इज़ सेइंग कि आई विल टेक केयर। तो मैंने कहा कि हाँ, कम से कम 1:30 बजे तक तो मैं आपका साथ दूंगा। और संजय दत्त की फिल्मों से जो चुनिंदा नगमे हैं, चुनिंदा गाने हैं, दोज आर सम ऑफ द फैसिनेटिंग सॉन्ग्स। तो ही मेड अ रियली ग्रेट कम बैक थ्रू मुन्ना भाई, MBBS, फिर लगे रहो मुन्ना भाई एंड सो ऑन। देर इज़ नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट, है ना कमाल की बात। तो आइए मिलकर सुनते हैं एक ऐसी ही फिल्म का नगमा, और मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा ख़ास शो जिसका नाम है हेलो रेनबो, और रेडियो की तरंगों के संग हम यहाँ पर आप तक पहुँच रहे हैं। एंड वी विल ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वेरी वेरी पॉपुलर। तो चलिए, हसीना मान जाएगी इस फिल्म से गाना सुनते हैं।

ऑलराइट दोस्तों, 1:30 हमारी स्टूडियोस की घड़ी बता रही है, तो ये समय है हमारे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा सुबह हो गई मामू वाला गाना, मुन्ना भाई MBBS, जो कि एक आइकॉनिक फिल्म थी बॉलीवुड ने, काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी फ्रेश वाली फीलिंग, दोस्ती के नाम, और फिर अरशद वारसी संजय दत्त की जोड़ी ने क्या कमाल किया था। So we'll be able to listen to some more songs, and we have a huge list of songs. Chahe wo 10 hone dijiye ya phir aapke Mahi Ve Piyu Bole bhi ek bahut hi khoobsurat gana hai Parinita se, aur phir Agnipath mein unka jo character hai wo bepana mohabbat ki khatir, balki jang mein har cheez jaiz hai kehte hain na, waisi baat thi. Phir unke upar ek film aayi thi, biopic zyadatar जो लोग नहीं हैं उनके ऊपर आती है, लेकिन संजू के ऊपर फिल्म आई थी संजू, जिसे रणबीर कपूर ने एक्टिंग करके दिखाया था। उस फिल्म से भी कुछ गाने हैं, फिर हम आपको लिए चलते हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम, पल पल, और ये सब कुछ आपके लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव एंड आई विल बी टेकिंग लीव, बट द सॉन्ग्स विल कंटिन्यू एंड आवर फ्रेंड रेणुका विल एनथ्रॉल यू विद हर जश्न हैदराबाद। वो बेपनाह मोहब्बत, ताकत और क़ुव्वत लेकर आई हैं, और आज रिमझिम हैदराबाद के ऊपर वो कुछ

0: से अपने ख्यालात साझा करेंगी और उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आई टेक लीव हास्ता ला विस्ता बेबी अडियोस अमिगोस आई विल सी यू वेरी सून अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Now just imagine. एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

0: फर्स्ट मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है,
3: बेचारी मैं छोड़ाऊँ?

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्क।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to you.
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
0: I'm not listening to you.
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her.
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले भावरे जैसे, अरे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्न।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to you.
1: दिन में नजरे इनकी इधर उधर।
0: I'm not listening to you.
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her.
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सामाइन, अभी आप मेरे दोस्त फनेंदर से रिमझिम सुन रहे थे। पेश है अगला प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नैरंग का।

मगर इसके अंदर एक समंदर छिपा है, वो समंदर जो बहता नहीं, शोर नहीं करता, सिर्फ ठहर कर अपनी गहराई का पता देता है। सब्र वो चिराग है जो तूफान में भी बुझता नहीं, बल्कि अपने अंदर की रोशनी से राहों को मुनव्वर करता है। ये वो आंसू हैं जो आंख से नहीं गिरते, दिल के अंदर कहीं खामोश से बहते हैं। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि ये रब के फैसले पर खामोशी से रजामंदी का दूसरा नाम है। ये एक ऐसा सजदा है जो लफ्ज़ों के बगैर अदा होता है और आसमान की बुलंद तरीन रहमतों को ज़मीन पर उतार लाता है। सब्र कमज़ोरी नहीं, ये ताकत है, वो ताकत जो इंसान को गिरने नहीं देती, जो दुख में भी आजिज़ी सिखाती है और आजमाइश में भी इंसान को जगमगाते हुए सितारे की मानिंद बना देती है। जो सब्र करना सीख लेता है, वो वक्त को शिकस्त देना सीख लेता है, क्योंकि वक्त सब कुछ छीन सकता है मगर सब्र का विखार नहीं छीन सकता। सब्र एक ऐसी सिफत है जो इंसान को मुश्किल हालात में साबित कदम रहने और इस्तेखामत से काम लेने का हौसला देती है। ये महज इंतज़ार का नाम नहीं, बल्कि ये एक अंदरूनी क़ुव्वत है जो हमें परेशानियों, आजमाइशों और चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार करती है। सब्र ये सिखाता है कि हर मुश्किल का एक इख्तिताम होता है और हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर आता है। ये एक ऐसा हथियार है जो नाउम्मीदी को ख़त्म करता है और उम्मीद की किरण रोशन करता है। जब इंसान सब्र इख्तियार करता है तो वो न सिर्फ अपनी ज़ात को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। सब्र दरअसल इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला की हर तदबीर में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। ये हमें सिखाता है कि बाज़ औक़ात हमारे लिए जो चीज़ बज़ाहिर अच्छी नहीं होती, वो दर हकीकत हमारे बेहतरीन मफाद में होती है। सब्र हमें खिनात और शुक्रगुजारी का दर्स देता है कि जो कुछ हमारे पास है उस पर मुतमईन रहें और जो नहीं है उसके लिए जा परेशान न हों। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को कबूल करने का नाम है और इस बात पर यकीन रखना है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र इंसान को जल्दबाजी और गलत फैसलों से बचाता है और उसे सही वक्त का इंतज़ार करने की तरगीब देता है। ये रूहानी सुकून और जहनी इत्मीनान का बाइस बनता है। सब्र एक ऐसी खूबी है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी से हमकिनार करती है। ये हमें ज़िंदगी के हर मरहले पर मजबूत, पुरसकून और पुरउम्मीद रहने की तलखीन करता है।

समय जैसे कि आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो हम बात कर रहे हैं टाइगर्स के बारे में। तो असल जो खतरात इनको पेश आते हैं वो है इनकी जो आबादी है गुज़िश्ता एक सदी में 95% से ज़ायद कम हो चुकी है। इसकी कई एक वजूहात है, जैसे कि गैर कानूनी शिकार का होना, जंगलात का खातिमा और इंसानों और जानवरों का जो टकराव है। इस वजह से इनकी जो खाल होती है, हड्डियां और जिस्म के जो दीगर हिस्सों की स्मगलिंग होती है, उनका अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो शेर की नस्ल है वो खत्म होती जा रही है। इसके अलावा इंसानों की जो बढ़ती हुई आबादी है, तामीरात है और ज़िरात की वजह से जंगलात तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जिससे उनके जो रहने का ठिकाना है यानी जंगलात है वो उनसे छीन ली जा रही है। ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ, और कुदरती ठिकाने ख़त्म होने की वजह से इंसानी आबादियों का ये लोग रुख करते हैं, जिससे अक्सर उन्हें टकराव होने की वजह से मार दिया जाता है। अब मसला ये है कि इनके तहफ्फुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, शेरों की जो नस्ल है उसको बचाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में टाइगर रिजर्व यानी महफूज जंगलात बनाए गए हैं, गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए सख्त कवानीन, और जंगलाती पुलिस यानी फॉरेस्ट रेंजर्स का गश्त बढ़ा दिया गया है।

शेर जंगल के माहौलियाती निज़ाम का जो एक इकोसिस्टम होता है उसके एक अहम हिस्से का रोल अदा करते हैं। अगर जंगल में शेर की तादाद मुस्तहकिम रहेगी तो जंगल की पूरी लाइफ चैन यानी जो गजाई जंजीर है, जो सिलसिला है, वो बरकरार रहेगा। इस दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम कुदरत के इस खूबसूरत शाहकार को बचाने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। सामाइन, बज्म में होगी इनसे मुतालिक और भी शऊर बेदारी की जो बातें हैं, आइए सुनते हैं अगला गीत आतिफ असलम की आवाज़ में, जिसके बोल है दिल दिया गल्ला।

दोस्तों, जैसा कि हम इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मौजूदा तैदाद और ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के आगाज़ में दुनिया भर में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इनकी किस्में मौजूद थी। गैर कानूनी शिकार की वजह से 2010 तक इनकी तादाद गिरकर सिर्फ और सिर्फ 3,200 रह गई थी। हालिया बरसों में सख्त हिफाजती इकदाम की वजह से इनकी तादाद में कुछ बेहतरी आई है और अब दुनिया के जंगलात में शेरों की जो तादाद है तकरीबन 5,500 से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का है जहां 3,000 से ज़्यादा शेर पाए मौजूद होते हैं। और इनके जो हकायक है और इनकी जो मालूमात हम बात करते हैं तो हर शेर के जिस्म पर मौजूद काली धारियां जो स्ट्रिप्स होती हैं वो इंसानों के फिंगर प्रिंट्स की तरह बिल्कुल मुनफरिद होती हैं। दुनिया के किसी भी दो शेरों की धारियां एक जैसी नहीं हो सकती। माहौल के लिए जो शेर है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये जंगल का एम्ब्रेला स्पेशीज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि शेर को बचाने का मतलब पूरे जंगल को बचाना है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो जंगल में हिरन, जंगली सुअर और दीगर सब्जी खोर जानवरों की तादाद इतनी बढ़ जाएंगी कि वो जंगल की तमाम घास और पौधे खा जाएंगे। जंगल के खात्मे से ज़मीन बंजर हो जाएगी, नदी नाले सूख जाएंगे और बिलाखर इंसानों के लिए ऑक्सीजन और पानी की कमी हो जाएंगी। तो समाइन, इस अहम दिन पर हम ये अहद करें कि हम जंगलात को बचाएंगे और जो जंगलाती जो जानवर हैं उनका भी तहफ्फुज़ करेंगे।

स्टडीज की घड़ी में 10:09 और 55 सेकेंड हो चुके हैं। FM 101.9 MHz पर समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। नैरंग के इस बज्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फूल और बरसात की, और साथ ही साथ हम आपको सुना रहे हैं पुराने और हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, फूल और बरसात का जो वक्त होता है वो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि दोनों ही इंसान के उदास दिल को खुशी बख्शते हैं। बरसात का मौसम और फूलों का दिलकश नज़ारा इंसान को ज़हनी सुकून देता है। लोग अपने घरों के बगीचों में बैठकर इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ उठाते हैं। शायरों ने भी अपनी शायरी में फूल और बरसात के इस हसीन ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। तो समय कहीं जाइएगा नहीं, फूल और बरसात का जो हम सिलसिला जारी रखेंगे, आइए सुनते हैं ये अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में, जो कि लिया गया है फिल्म इम्तिहान से।

शायर ने क्या खूब कहा है, पौधों पे अजब रंग है, फूलों पे अजब रूप, पौधों पे अजब रंग है, फूलों पे अजब रूप, बारिश के बरसने से निखर आई है हर चीज। सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रोग से।

दोस्तों, सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। बरसात का मौसम सबका पसंदीदा मौसम होता है। शदीद गर्मी के बाद जब आसमान पर काले बादल छाते हैं और ठंडी हवा चलती है तो हर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। बारिश बरसते ही गर्मी खत्म हो जाती है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। बारिश का जो पानी है पौधों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। बरसात का पानी मिलते ही ये जो पौधे हैं ना, दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। बागों में लगी कलियां खिलने लगती हैं और देखते ही देखते रंग बिरंगे फूल मुस्कुराने लगते हैं।

दोस्तों, सिर्फ मौसमी बरसात में इंसान ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद भी इस मौसम में खुश होते हैं। जी हाँ, मोर जो है इस खूबसूरत मौसम में अपने पंख फैलाकर नाचता है। तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ जो है वो रंग बिरंगी फूलों पर बैठकर उनका रस चूसती है और खुशी से मंडलाती है। जब बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उस पर ठहरती है तो वो वाह, वो मंजर जो है वो मोतियों की तरह चमकते हैं। इस सुहाने मौसम में जब हल्की हवा चलती है तो फूलों की जो प्यारी प्यारी खुशबू है वो पूरे घर और महल्ले में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे माहौल में किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो। जी हाँ, वाकई जो मंजर होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। आइए सुनते हैं अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसके बोल है खैरियत तो पूछो।

दोस्तों, बरसात और फूल का जो ताल्लुक है वो एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जैसे बरसात और फूल आपस में बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, बिल्कुल उसी तरह से बरसात का जो पानी है पौधों और फूलों को परवरिश करता है। बरसात के बगैर फूल मुरझा जाते हैं और फूलों के बगैर बरसात का मौसम जो है वो बेरंग सा लगता है। जब तपती हुई गर्मी के बाद बरसात का महीना आता है ना, आसमान से जो गरज चमक के साथ बारिश बरसती है तो प्यासी जमीन को सुकून मिलता है। मिट्टी से बहुत ही प्यारी खुशबू उठती है। बारिश का पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है तो उनमें एक जान आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है फूल और बरसात का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। आसमान से बरसे जब बारिश की बूंदे आसमान से बरसे जब बारिश की बूंदे बाहों में खिल उठी फिर फूलों की आंखें। सुनते हैं अगला गीत, तो फिल्म सौदागर से लिया हुआ है जिसके बोल है मोहब्बत की। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की।

दोस्तों, स्टडीज़ की घड़ी में 10:53 और 10 सेकंड्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, बरसात और फूल के बारे में हमने बात की है, तो हमें इनसे ये सीखना है कि

सख्त गर्मी के बाद हमेशा खूबसूरती और नरमी यानी फूल और बारिश आती है। तो ये दोनों जो मिलकर ज़मीन को एक खूबसूरत गुलिस्ता बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी अब हमारे जो अतराफ व अकनाफ लोग हैं जिससे हमें मोहब्बत खुलूस और भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहना होगा, और हमारे अतराफ व अकनाफ के लोगों के साथ ऐसे रिश्ता बनाना होगा जिस तरह से बारिश और फूल ने बनाया है, जिससे हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें खुशियाँ आ सकती हैं। सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, जिसके बोल हैं ए फूलों की रानी।

सामाइन, अभी आपने सुना पुरानी हिंदी फिल्मों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। आइए बज्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम-ए-शब। तहरीर वो पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, शहर की राह तक ना ता शहर आसान नहीं होता। जिंदगी में अजीम कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ सलाहियत काफ़ी नहीं बल्कि सब्र, साबित कदमी और कुर्बानी भी ज़रूरी है। जो लोग रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता रोशन करते हैं, इन्हें भी आजमाइशों, नाकामियों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह रात भर जाग कर ही शहर का इस्तकबाल किया जा सकता है, इसी तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलसिल मेहनत और इस्तकामत दरकार होती है। बड़ी कामयाबियां बड़ी कुर्बानियों का तकाजा करती हैं। आजमाइशों से घबराकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब्र करने वालों ही को कामयाबी की रोशनी नसीब होती है। अंधेरी रात के बाद ही रोशन सुबह तुलू होती है। जो शख्स मुश्किलात के अंधेरों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वही आखिरकार कामयाबी की सहर का नज़ारा करता है।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे।
1: रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

शांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भाई आज पूरे दिन हल्की हल्की बारिश होती रही, तो खोया खोया चांद इन बादलों में ज़रूर होगा, है ना। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत, और एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। ১৯৬০ में आई फिल्म काला बाजार से आपने ये गीत सुना, एसडी बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं ऋतिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

दीजिए इजाजत क्योंकि भाई अब आ चुकी हैं स्टूडियो में अंजू निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की 2 समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 12:11 और 24 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, क्योंकि दिल ने अब जागने का नया बहाना जो ढूंढ लिया है।

आंखें बंद करके बस तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, जैसे रूह में उतर आए हो तुम किसी ख्वाब की तरह।

देख लो तसल्ली हमारी दिल की, देख लो तसल्ली हमारे दिल की कि दिल ने फिर कहा है तुम आओगे जरूर, यही भरोसा हर सांस में रहा है।

अच्छा एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मोहब्बत है किसी से तो इसे छुपाते क्यों हैं, ये जानते हुए भी कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी हो, यानी पता तो चल ही जाता है ना इस दुनिया को। या यूं कहें कि मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि मालूम होता है कि नहीं मालूम होती है।

लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, और मेरे जीने की वजह तो बस तुम्हारा साथ है।

जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की 2 समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे आईआरजीसी को मदद मिलती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबूरी

समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुहानी का। एक बार मैं अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जरा देखो, रात खामोश है और ये पूर्णिमा का चांद चुपके से कह रहा है कि कोई दूर बैठा आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादों में बह रहा है।

तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है ना, तू तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है। ए चांद बताना, क्या वो मेरी तरह भी करवटें बदलता है?

कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, बस सीने से लगा लो ताकि धड़कने सुकून की सांस ले सकें।

लफ्ज कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, लफ्ज कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, बस धड़कनें धीरे से पूछती हैं क्या हम इस बेपनाह मोहब्बत के काबिल हैं।

दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, कि आप ही जाओ कि ये दिल की धड़कन अब बिखरने लगी है।

न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, तेरे कंधे पे सिर रखकर कटें कुछ पल, बस यही दिल की राहत है।

दोस्तों हम आपसे भी कहेंगे कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद यानी 2:10 पर रात सुरमई लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी मैं। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से

0: दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमरीका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव डाल रही है और उनसे अनिवार्य समुद्री बीमा लेने के लिए मजबूर कर रही है। अमरीका ने कहा है कि यह कदम ईरान के अवैध तेल व्यापार और गुप्त जहाज बेड़े पर दबाव बढ़ाने की उसकी नीति का हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश ने ग्लासगो में 20.46 सेकंड में रेस पूरी कर जीत दर्ज की। उन्होंने कैमरून के इमैनुअल एसेमी को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 31 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत गीतों भरा कार्यक्रम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था, अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था कि तुम घड़ी की सुइयों को देखकर उठ खड़े हुए। ये तो हमारा करार नहीं था।

रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, संभालो मुझे कहीं खो ना जाऊं मैं तुमसे दिल लगाकर।

मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। तुम कदम से कदम तो मिलाओ, हम इस मोहब्बत को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।

तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। इस बेखुदी में जो सुकून है, उससे बाहर आने के लिए होश में आने की जिद हमसे ना करो।

दोस्तों, अब होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेव। कार्यक्रम हमराही लेकर 3:10 से मुझे अनुमति दीजिए। जल्द मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त

0: दोष लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकेंड का गेम्स रिकॉर्ड और अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनकात ने 10.83 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नजाकत के साथ धीरे धीरे परवान चढ़ती है। तो आइए इस खामोश फिजा में थोड़ा रंग भरते हैं और धीरे धीरे मचलते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

रात के 3:11 और 19 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो वो एकदम से नहीं बल्कि बहुत

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनुपमा से अभी आपने गीत सुना। आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, दिल की तड़प को तो बस धड़कने समझती हैं। जब बात चले मोहब्बत और हसीन निगाहों की, तो फिर ये आंखें हर राज बयां करती हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से अभी आपने गीत सुना। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आया सावन झूम के से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म तीसरी मंजिल से।

दोस्तों कहते हैं कि जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तब दिल की धड़कनें बोलने लगती हैं, और जब दिल किसी को सच्ची शिद्दत से याद करता है तो वो पुकार हवाओं के जरिए सीधे चाहने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, फिल्म है ज्वेल थीफ।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म काला बाजार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यादें किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जब सन्नाटा गहराने लगता है और हवाएं थम जाती हैं, तब दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है। वही पुरानी यादें जो दिल के गुलशन में हमेशा खिली रहती है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, खामोश लबों से भी तुम बहुत कुछ कह जाते हो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है मेरे हमदम, बिना छुए भी तुम रूह को महका जाते हो।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म आवारा से ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक

0: खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। ये 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जनदर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन किया। खेल के 7वें दिन पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल मोर्सिंगन काथ ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said, "The students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression." After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. The government has said that the country became free from left-wing extremism after nearly 6 decades of violence, which was once considered one of the biggest threats to the internal security. In reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said that this has been a

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत हो गई है और सावन की फुहार जो सिर्फ जमीन को ही नहीं हमारे दिलों को भी भिगो देती है। जब हरी भरी टहनियों पर बूंदें गिरती हैं तो लगता है जैसे कुदरत खुद मुस्कुरा रही हो। आइए सावन को और यादगार बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है आया सावन झूम के से।

दोस्तों, जिंदगी के जो भी पल हैं उनको हंसी खुशी के साथ जिएं, क्योंकि बाद में समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आपने गांव की जिंदगी देखी हो या कभी गांव में रहे हो तो आपको सोचकर बड़ा अच्छा लगता होगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वहां का सादगी भरा माहौल दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं चितचोर फिल्म से के जे येसुदास की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रोटी से।

दोस्तों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, पर अगर मन में जुनून और हौसला है तो जीत बिल्कुल निश्चित है, और फिर हर रास्ता आसान हो जाता है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शोला और शबनम से अभी आपने गीत सुना। सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, बिल्कुल दोस्तों, सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, पर उस रास्ते पर चलने वालों की शान ही कुछ और होती है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से ये गीत।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म यस बोस से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस ज़रूर हो जाता है।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भीगी पलक से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म भीगी पलकें से आप ये गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही हमेशा बना रहे, पर अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है। हम आपसे मिलते रहेंगे, पर अभी अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु तथा मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान

विकास, नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले देश के नवाचार तंत्र को और मजबूत करेंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 12 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी की इस प्यारी सी सुबह में मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस प्यारे से मौसम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से जो गाया है अनूप जलोटा ने।

दोस्तों, किसी का साथ अगर साथ में है तो मंजिल को पाना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर किसी का साथ नहीं है तो सफर कांटे नहीं कटता।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम है राही प्यार के से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, गम खुशी ये सब जिंदगी का हिस्सा है, पर हम दुख आने पर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर दोस्तों, अगर दोनों में तालमेल बिठा लिया जाए तो कितना अच्छा हो। आइए सुनते हैं बातों बातों में फिल्म से पर्ल पद्म से अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: उठ सबके